0: नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सम्झना महर्जनसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
1: आज 2083 साल असोज 27 गते मंगलबार, सन् 2026 अक्टोबर 13 तारीक असोज शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि।
2: काया कैरन का साथमा
1: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
2: राष्ट्र कुसान किसान
1: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स।
0: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट।
1: बूढ़ी गंडकी को बाढ़ी ले 200 घर बगे, ओत खोज्दै प्रभावित 5000 घर धुरी अंधकार में, चुम उपत्यका को पदयात्रा स्थगित।
0: इस वर्ष मुख्य चाड़ पर्व में अत्यावश्यक वस्तु को भाव अचाक्ली बढ़ा, उपभोक्ता मर्का में वर्षभर भित्रने रेमिट्यान्स को झंडे 25% भदौदेखि कार्तिकसम्म भित्रने गरेको तथ्यांक।
1: प्रस्तावित राजदूत को सुनवाई शुरू, सुनार विरूद्ध महिला हिंसा र थापा विरूद्ध पीआर को आरोप।
0: भारत को जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने, प्रदर्शन का लागि 3 नया ठाउँ तोकिए।
1: विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में नेपालले आज ओमान संग खेल्दै।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सेंग दे पिम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़